0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
1: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
0: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
1: और दोनों मालूमातो दे पारा पदगल नंबर काल कवले शे
0: 0319 55 23 404
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Ramad Hussain Razde is na formula beauty cream. ता सुबह सोच कवे चि दे क्रीम के आखिर दसे सक कमाल दे दा आगा क्रीम दे चि दशपे क्यों लगे वे सार क्यों दा का फेस वॉश तरह ता सुमा खुएं दे नो वो रजो के दन्ना दन्ना गारंटी तरह जवेम चि ताऊ सबा दे दे रिजल्ट पतो लगी और ब्या बता सु गोरे और माता बदुआ कवे अगर ता सुदा फार्मूला क्रीम फक नशी नो ता सु खपल पेमेंट वापस आ गए स्टेशे तेर सरिंदा मखना लरे कई छायानिम लरे कई और जवाने की चिकम द पेरलू जीना को रावती भी अगम बिल्कुल सफा कई और पोवो रोजो के दन्ना दन्ना दाता उसका सासु रिजेक्ट तख्तारा कई

0: फिर है बच।
1: सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। हामिदन व मुसल्लियन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَالَ تَعَالَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ صدق الله العظيم। اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कदरमनो जस्ता सुरूर बंदा मौलाना मोहम्मद शाहिद स्तासो जमा रोजाना द यूल सुना दूल सुपुरी मरगरतिया कीगी औदा मरगरतिया द सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द तरफा औदागी पविसातत भी। कदरमनो डीरी उरजिबाद यानी सलोर पिंजाद सलोर वजीबात चिले तो सर मुखातब यम आओ चूंकि नौ माँ आओ दखबल खार न बहर तेलोम लिहाजा जमी जतबंदो उमददी दौरान माता द पंजाब जमुंग औरोर दे उसी दुन के आओ अगीबा केदा हुई चेर जमोली से पक्कर के पाते के गम नौ अगीदा तद्दा अर्ज हो कुछ येरा कल कल बयान मुफ्ती से बो तो बयान चिके लग दग की कवा कल कल उर्दू की नो मावत हुई ची इंशाल्लाह अगी वी चेरा मुंगम तिसो फायदा ता ना अखलू इस्तिफादा अखलू नो पदी बा इंशाल्लाह नन खुब मुंगा खबर उर्दू की लग कव ब्या चिकला खबल राय ता सुहमो कई नो इंशाल्लाह जमा जहन की दारी चिपीर मंगल बुध जमेरात जुमा दी पोरी दा सलूर पिंज बयाना भा इंशाल्लाह पुख्तो की कहू आओ दीन इलावा चे दे हफ्ता इतवार दब जमूंगा चे पक्कर बनो के वजीरिस्तान के जमूंगा कम उर्दू स्पीकर रोरियान दी खवैन दीदी आओ आगे या द कारोबार पर सिलसिले के दिल तक मुसाफर दी या इच दे नौर सौ वजबान दिल तक उसीगी नो दागी बम रियायत सा तुझ का मंगा टोल मंग के द खबर निश्त च दा द पंजाब दे ओ या द सिंध दे या द बलजी दे चूंकि द कलिमे च कम निस्बत दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह द दिलान दी जमाई जतमंदो टोल यो शांति ओ मंगा रिश्तम सदा बैज मोहम्मदीयम बस

अच्छा, तो जो मेरा मेन बताने का मकसद है, जो बताने मैं जिस बात पे एम्फसाइज कर रहा था, वो ये था कि सबसे पहले हमें समझना है, आवाज़ देखें, आप उस चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, आप उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं जिसके मुताबिक या जिसके बारे में कोई कानून मौजूद नहीं है, जिसके बारे में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब आप औरत मार्च, आप जो है ख्वातीन के हकूक, इन चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए, इन चीज़ों को जो है आड़ बना के अगर किसी और मकसद को हासिल करना चाहेंगे तो लोग आपके खिलाफ ही रहेंगे, लोग आपके अगेंस्ट ही बात करेंगे। तो चूंकि हमारे पास, मैंने जैसे एक लंबी सी गुफ्तगू की, पूरा आधा घंटा मैंने आपको इसी चीज़ पे समझाया कि शरीयत में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, तो इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी कानून की बात करते हैं। तो पाकिस्तानी कानून में औरत को जो तहफ़ फराहम किया गया है उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले विरासत की बात होती है, क्योंकि सबसे पहला हक जो एक बेटी का मार दिया जाता है वो विरासत की सूरत में होता है। यानी जब बाप का इंतकाल हुआ तो बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहले जो अमर होता है वो उसकी जायदाद की तकसीम होती है। अब उसकी जायदाद की तकसीम में जो बेटे हैं वो काबिज हो जाते हैं सारी जायदाद पे, और बेटियां सारी महरूम कर दी जाती हैं। अब अगर बेटियों को महरूम कर दिया गया तो इसके बारे में कानून ने बड़े सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जो केसेस विरासत से जुड़े हुए हैं, विरासत से मुतालिक जितने भी पाकिस्तान में केसेस हैं वो 6 महीने के अंदर फैसला हो जाते हैं, और विरासत के केसेस में आप पे कोई टाइम लिमिटेशन भी नहीं लगती। जब आपका दिल चाहे आप आ जाएं और विरासत के लिए केस दायर कर दें, कानून आपको तहफ़ फराहम करता। दूसरी चीज जो अहम है हमारे खासकर माशरे में वो है गैरत के नाम पे कत्ल। अब कानून ने इसको कैसे प्रोटेक्ट किया? अब गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है, बाकी हमारे पाकिस्तान में जितने भी कत्ल हैं, यानी आपने किसी को कत्ल कर दिया तो जो वो रसान हैं उनके पास ये हक उनको हासिल है, ये इख्तियार उनको हासिल है कि वो अगर आपको माफ़ करना चाहें तो वो माफ़ कर सकते हैं। यानी कानून उनको इजाज़त देता है, शरीयत उनको इजाज़त देती है कि वो कातिल को माफ़ कर दें। कातिल को माफ़ करने का जो हक है वो मक्तूल के वुरसा के पास मौजूद है, चाहे वो पैसे लेके माफ़ करना चाहते हैं, चाहे वो वैसे इफ़ी सबीलिल्लाह माफ़ करना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी। लेकिन जब आपने गैरत के नाम पे कत्ल किया तो ऐसे केसेस में राजीनामा उसकी कानून इजाज़त नहीं देता, और अगर राजीनामा हो भी जाए तब भी कानून 10 साल से उम्र कैद तक की सज़ा की जो गुंजाइश है वो रखता है। और अदालत को ये कहता है कि अगर राजीनामा हो भी जाए, क्योंकि गैरत के नाम पे कत्ल में तो अक्सर राजीनामा हो जाता है, तो ऐसे राजीनामा हो जाने के बावजूद भी आपके पास ये इख्तियार है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अदालत की, अगर आप काजी हैं तो आप ऐसे मुर्जम को सजा जरूर दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं, कानून आपको इसकी इजाज़त देता है।

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 DA Khan, Radio Pegham 97.4 Paharpur and Radio Aman 88.4 Tanka. साबिनिकराम सफर की चार बज चुके हैं जनाब, चार बजते ही तीनों रेडियो स्टेशन टांग डेरा और पहाड़पुर से आप एक साथ सुनते हैं केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रमोशनल प्रोग्राम केसन टी टाइम। जी जनाब, तमाम सुनने वाले गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटी, चाचा एंड चाची, मामा एंड मामी, दादा एंड दादी, जान नाना नानी, आपको और सभी सुनने वालों को जनाब दिल से दिल की अथाह गहराइयों से जनाब ढेर सारा वेलकम टू केसन टी टाइम शो। जी तो जनाब कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जनाब बिल्कुल जी खैरियत से होंगे, आप बिल्कुल जनाब खैरियत के साथ होंगे और आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि जनाब छुट्टी का दिन जो होता है वो जी जनाब अच्छा ही गुजरता है, क्योंकि जनाब छुट्टी वाले दिन आप मेंटली तौर पर जो है रिलैक्स होते हैं कि आज के दिन आपने ना ही कॉलेज जाना है, ना ही आपने स्कूल जाना है, ना ही मदरसे जाना है, ना ही कहीं नहीं मदरसे की, तो खैर मेरे ख्याल में संडे को छुट्टी नहीं होती, जुम्मे को छुट्टी होती है। एनीहाउ बाकी जितने काम है जनाब तकरीबन मोस्टली लोगों के संडे वाले दिन जनाब जो है वो जब उठते हैं और जो पहला एहसास होता है, जी जनाब आंख खुलते ही जो पहला ख्याल आता है वो कौन सा होता है कि आज दिन कौन सा है, दिन कौन सा है? तो जनाब जैसे आपके दिमाग में आते हैं जो जुम्मे के दिन छुट्टी करने वाले होते हैं या इतवार के दिन छुट्टी करने वाले होते हैं, तो डेफिनेटली जिनका जो भी छुट्टी का दिन होता है तो एक खुशी का एहसास होता है। और क्या कहते हैं जनाब, जी जनाब जब आप खुश होते हैं तो जनाब आपकी बॉडी जो है वो खुशी के जो है हार्मोन्स पैदा करती है, ठीक है जनाब। एंड जब खुशी के हार्मोन्स पैदा होते हैं तो फिर जनाब चिल सा हो जाता है बंदा, एकदम फ्रेश सा हो जाता है और टेंशन सारी थकावट सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि जनाब आपकी बॉडी जो है वो पहला पैगाम सुनकर कि भाई आज छुट्टी का दिन है। हाँ जनाब छुट्टी का दिन है, ढेर सारा चिल करना है, ढेर सारा एंजॉय करना है, कोई काम शाम नहीं करना, तो जनाब आज के दिन आपका वैसे ही बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। और अभी का घंटा जो है 4 बजे का घंटा, अगर आप इस वक्त जाग चुके हैं, अगर सो रहे हैं तो फिर क्या कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप जागे हुए हैं तो जनाब बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके कानों में पहुंचने वाली है, और जब इंफॉर्मेशन आपके कानों में पहुंचती है तो जनाब फिर क्या होता है, जनाब असर असर असर असर करती है। कल मैं आपसे बोल रहा था ना कि आपको आपका जिस्म कहीं से जल जाए या आपके जिस्म को कोई तकलीफ पहुंचे तो फिर क्या होता है जनाब, क्या होता है जनाब, जी जनाब मैसेज फौरन जाते हैं आपके दिमाग को। अगर दिमाग काम ना करे ना, दिमाग काम ना करे तो बाज़ुकात ये होता है, आपने देखा होगा शुगर के पेशेंट जो होते हैं जिनकी जिनकी नर्व्स बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, ठीक है जनाब। नर्व्स बेसिकली आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है जनाब, ये नर्व से मिलकर बना होता है और आपके बॉडी से पैगाम आपके दिमाग को जा रहे होते हैं। आपने कभी सुना कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं बेचारे, उनकी बाज़ुकात जो है इस हद तक शुगर बढ़ जाती है कि उनकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। और अगर आपने बहुत से दफा देखा होगा कि किसी का पूरा पांव जल जाता है, उनको पता भी नहीं होता। आपने कभी देखा कि एक स्टोरी हमारे सामने आई कि जब हम मेडिकल में थे तो एक स्टोरी सामने आई कि भाई एक बंदा ऑफिस से निकला और उसका पांव जो है ना गलती से मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर आ गया, ठीक है जनाब। वो 30-35 मिनट की जो ड्राइव थी, ठीक है जनाब, वो ड्राइव करता हुआ जो है पहुंचा, लेकिन घर जब पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका पूरा पांव जल चुका है। देखा, ये सिस्टम है नर्व्स का सिस्टम। बेसिकली आपका जिस्म कुछ महसूस नहीं करता, ठीक है जनाब, जिस्म तो महसूस करता है लेकिन असल काम आपके दिमाग ने करना होता है कि वही मैसेज जब कन्वे होता है आपके दिमाग को तो दिमाग कहता है कि यार पांव जल रहा है जनाब, आपके पांव को हो गया। अगर देखें नर्व्स कट जाए बीच में से, सिग्नल्स आपके दिमाग को ना पहुंचे तो फिर क्या होता है कि एक बंदा दफ्तर से निकल कर घर तक पहुंचता है, उसका पांव जल चुका होता है और उसे पता तक नहीं होता है। तो जनाब बेसिकली आपका जिस्म भी मुतहरिक होता है और दिमाग भी, आपको जब आपके दिमाग से पॉजिटिव सिग्नल जो है आपकी तरफ आते हैं, ठीक है जनाब, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है। वैसे बहुत सारे काम ऐसे हैं भाई, बींग मुस्लिम, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमने कलमा पढ़ा है, हमारा दीन हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जनाब, हमें मोटिवेशनल तकरीरें सुनने की जरूरत नहीं है, हमें अंग्रेजों से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना दीन जो है वो इतना प्यारा है, वो हमें इतनी प्यारी चीजें सिखाता है कि अगर हम थोड़ा बहुत अमल करें तो यकीन कीजिए। और इन्हीं बातों में से एक बात है, एक बात जो है वो कहते हैं जनाब कि शुक्रगुजारी जो है
वो बहुत बड़ी नेमत है। और ये एक अमल जब आप करते हैं ना भाई, ये जो शुक्र गुजारी का अमल है भाई, ये भी बड़ा जबरदस्त है और पूरे जनाब आपके माहौल को ये जबरदस्त कर देता है। कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई बंदा हॉस्पिटल में दाखिल नहीं है, आपके घर का कोई बंदा अगर अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं है, आपके घर के अंदर कोई थाना कचहरी अदालत के मामलात नहीं चल रहे, ठीक है जनाब, आपके घर के अंदर अगर ये दो बातें नहीं है, नंबर वन कि कोई फर्द आपका अस्पताल में दाखिल नहीं है, नंबर टू कि अगर आपके घर के अंदर कोई अदालत के चेहरे वगैरह का थाने का चक्कर नहीं चल रहा, ठीक है जनाब, या आपके घर के अंदर कोई जहनी या जिस्मानी मजूर नहीं है, जहनी या जिस्मानी, ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है, जहनी या जिस्मानी अगर डिसेबल बंदा आपके घर में है, मौजूद नहीं है, आप रोजाना जो है अपना मर्जी का खाना खा के सोते हैं और आप अल्लाह ताला के अलावा आपके हाथ किसी के आगे नहीं झुकते, तो भाई दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान है आप। अगर ये पांचों के पांचों जो है आपको अलामात जब आप नजर दौड़ाते हैं अपने घर के अंदर, कि ना ही आपके घर में कोई अदालत का केस चल रहा है, ना ही कचहरी का कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर है, ना ही कोई बंदा आपका हॉस्पिटल में एडमिट है, ना ही आपके घर के अंदर कोई माजूर है जिस्मानी या जहनी, और आप अपनी मर्जी का हर रोज खाना खा के सोते हैं, तो भाई अल्लाह ताला का ढेर सारा शुक्र अदा कीजिए, ढेर सारा शुक्र अदा कीजिए इन तमाम बातों के ऊपर। लेकिन अगर इन पांचों बातों में से कोई एक अमल भी आपके घर में नहीं हो रहा ना, तो फिर भी अल्लाह ताला का ढेर सारा शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से आपकी नेमतें बढ़ती हैं जनाब, आपके ऊपर नेमतें जो है बढ़ती हैं। फेसबुक लाइव के ऊपर आज मैं अपनी प्रोफाइल से लाइव हूं जनाब, तो आज तीन नहीं चार स्टेशन है, रेडियो पैगाम 97.4 पहाड़पुर, ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान, मेरा अपना शहर, मेरा अपना इलाका, और साथ में टांक, जी जनाब, जहां पर आजकल हम मेहमान बने हुए हैं। हाँ जी, मेहमान बने हुए हैं, और देखते हैं कि जी टांक वाले हमारी मेहमान नवाजी किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से कर रहे हैं जनाब, तो बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। मदनी साहब को मैंने देखा फेसबुक लाइव के ऊपर और जागे हुए हैं जनाब, टी टाइम में आ चुके हैं, और मुझे पता है कि आज इनकी चाय बहुत ही प्यारी होने वाली है। जीएम साहब फेसबुक लाइव के ऊपर, खलील ताबे जवान की आईडी के ऊपर आ चुके हैं, और जीएम साहब आज आप जो चाय पियेंगे ना, वो मेरे पास भी इस वक्त जो है चाय पड़ी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फेसबुक से ना अंदर लाइव आया करूँ, है जनाब, लाइव आके आपको देखूंगी वाकई मेरे पास चाय के कप पड़ा होता है। और पता है आज क्या हुआ, ये अभी मेरी ना छोटी बेटी जो है चाय लेकर आई है, तो उसने टेबल पर जैसे रखी है ना, तो उसके ऊपर मलाई नहीं थी, तो मैंने ऐसे चाय को देखा है और फिर मैंने अपनी बेटी की आंखों में ऐसे देखा ना, तो मैं बात तो कर नहीं सकता था आपके साथ जो बात कर रहा था, इसी दौरान जो बातें मैं कर रहा था, तो वो मेरी बात को समझ गए कि बाबा की चाय में मलाई नहीं है। तो वो गई है, अब दूसरा कप लेके आई है, और उसने पहले कप के अंदर जो है, मेरे पहले कप के अंदर उसने मलाई को डाला है, मलाई को डाला है, और पता है कि बाबा ने ऐसे चाय नहीं पीनी। तो चाय का मजा मलाई के साथ जबरदस्त होता है, मलाई के साथ, क्रीम के साथ। और जीएम साहब फेसबुक लाइव के ऊपर मेरे साथ मौजूद है, आज आप चाय पियेंगे तो मेरे शो के साथ, ठीक है जनाब, आप फिर आज अपनी चाय का मिठास देखिएगा, आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मीठी और इतनी पुरसकून आवाज है ये केसन की, जनाब आप चाय पीते जाएंगे बगैर मीठे वाले भी मीठी हो जाएगी।

जी जनाब, मैंने क्या एंड आप लोगों के लिए ना मैं टॉपिक भी साथ में लेकर आऊंगा। टॉपिक भी एक होगा जिसके ऊपर आप जो है थोड़ा सा सोचे ना। दो चार बजे उठ जाते हैं सिर्फ चाय के लिए उठते हैं क्या? हाँ जी, ये दुनिया की सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, भी सोचने के लिए भी है। तो आइंदा चार बजे आपको मैंने जगाना नहीं है, जगाना तो है लेकिन साथ में कुछ सोचने के ऊपर मजबूर भी करना है, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग को घुमाए, चार बजे उठते हैं चाय के साथ तो वैसे ही दिमाग फ्रेश होता है। तो चलो जी, आज आपका इम्तिहान लेते हैं, आपकी चाय कितने काम किया। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो भाई आज मेरे तरफ से टी कप जो है वो आप लोगों को अभी हम देने वाले हैं। टी टाइम है तो टी कप आप लोगों के लिए हम बनवा रहे हैं, टी कप बनवा रहे हैं, ठीक है जनाब, आप लोगों के लिए स्पेशली। सो वो

रोजाना के, जो एक आप मजबूरी में करते हैं और दूसरा आप खुशी से करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं जनाब। हमें डायल कीजिएगा 03449366 0344 936 3366। ये हमारा टेलनार के नंबर है। और इसके अलावा आप हमें जोंग पर भी ज्वाइन कर पाएंगे, और जोंग पर ज्वाइन करने के लिए 0313-798-4554 जनाब, इसके ऊपर कॉल कीजिएगा, एसएमएस कीजिएगा। और मुझे कहते हैं खलील, और जनाब मैं आपको बताऊं कि हमारी एक प्रोडक्ट इनकलाबी प्रोडक्ट बन चुकी है, ठीक है जनाब, जिसे रेवोल्यूशन का नाम आपने सुना हुआ, आज आपने हमारा प्रोमो देखा होगा, एंड प्रोमो के अंदर आपको कोई लव सुने को मिला होगा, द रेवोल्यूशन। हाँ जनाब, द रेवोल्यूशन क्या होता है यार, ये सुनिए थोड़ा सा।

जी जी जनाब, केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन, ठीक है ना। रेवोल्यूशन बोलते हैं इनकलाब को, और इनकलाब का बात है भाई, तो हम इंतजार ही करते रहेंगे। एंजरा वो हमारा लीडर जेल में चला गया, तो इनकलाब तो नहीं आ सका। एनी हाउ आ जाएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ। तो जनाब जो है रेवोल्यूशन जो है इनकलाब को बोलते हैं, और इनकलाब होता है कि बहुत बड़ी तब्दीली, एंजरा बहुत बड़ी तब्दीली जब आ जाती है तो बोलते हैं भाई इनकलाब आ गया। तो भाई ये प्रोडक्ट कैसे इनकलाबी प्रोडक्ट बन गई हमारी, सबसे ज्यादा इस नंबर वन प्रोडक्ट इस वक्त जो केसन की बन चुकी है ना, जो हम पिछले तीन महीने का डेटा अगर कलेक्ट करते हैं कि भाई केसन की कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रही है, द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ केसन।

0: जनाब ये जीएम साहब जो है ये बेसिकली टांग के हैं भाई। हाँ जनाब, फेसबुक लाइव के ऊपर लिखते हैं कि जनाब आप मेरे गांव के हो गए हैं। अच्छा जी, ये कहते हैं कि टांग में ऐसे सुना जा रहा है, तो भाई मेरा तो जो है टांग गली कबर वाली। ओह माय गॉड, कितनी मुश्किल खतरनाक गली है यार। अच्छा जी, गली कबर वाली है टांग के अंदर क्या भाई?
1: पांच प्रॉब्लम्स का एक सलूशन
0: टांग के अंदर भाई, गली कबर वाली क्या कोई मौजूद है? तो भाई जीएम साहब जो है डेरा में रहते हैं, टीचर हैं और हमारे बहुत बड़े जो है ड्राइवर भी हैं हमारी केसन एक्सप्रेस के। बहुत अरसे तक, और हम एक दफा ये मरी लेके गए थे, अल्लाह इनको सलामत रखे, और मरी में कहां कहां इन्होंने हमारी केसन फैमिली को घुमाया, ठीक है जनाब। और लोग डरते डरते आधी रात को हम मरी जाके पहुंचे, और मरी जब पहुंचे तो फिर जो हाल हुआ था, तूफान आ गया था जनाब, और आंधी थी, और जीएम साहब हमारी गाड़ी को चलाने वाले थे और हमें हौसला देने वाले थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से हम मरी पहुंचे थे। तो जीएम साहब भी हमें सुन रहे हैं और कहते हैं कि जनाब मेरा बचपन जो है वो टांक में कबर वाली जो गली है वहां पर गुजरा। चलो जी, अच्छा जी, मेरी बात करने से पहले ही जनाब कोई बंदे हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम उनकी बात सुन लें, तो जनाब उनकी बात को जनाब, चलो जी उनकी बात को सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो, एक मिनट ठहरेंगे जरा, मैं एक मिनट ठहरा, एक तो चाय पूरी नहीं पीने देते ना मुझे, लीडे लगाना मैं भूल जाता हूँ, चाय तो पूरी पीने दिया करें जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, असद फ्रॉम टांक
0: जी। असद, असद सर क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं?
2: आपने दो काम जो बता दिए ना,
0: हाँ,
2: तो मैं जिनका काम मजबूर होकर करता हूँ क्योंकि अल्लाह पाक ने ये मेरे जिम्मे लगाया हुआ है।
0: अच्छा, दिन के जितने काम होते हैं?
2: दिन का ना दिन।
0: अच्छा, दिन के, ठीक है,
2: दिन के सारे काम करता हूँ इसलिए कि अल्लाह पाक ने जिम्मे लगाया हुआ है,
0: ठीक है,
2: और दिन का काम फिर भी खुशी से करता हूँ इसलिए कि अल्लाह पाक को राजी करने के लिए खुशी से करता हूँ।
0: खुशी से करते हैं यानी दिन का काम आप जो है खुशी से?
2: सिर्फ दिन का काम करता हूँ तो मजबूरी से, अल्लाह पाक की मजबूरी से, और खुशी से भी करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझसे राजी हो। जज़ाकअल्लाह।
0: चलो, और मजबूरी में कौन सा काम करते हैं सर? ओके जनाब, ये हमारे साथ टांग से जनाब रेडियो अमन से हमें सुन रहे हैं जनाब, अकाउंट ऑफिसर हैं या अकाउंट में काम करते हैं असद अंकल असद, और ये बता रहे थे कि दीन का काम जो है वो मैं खुशी से करता हूँ। तो भाई बता रहे थे कि हमारी एक प्रोडक्ट इनकलाबी प्रोडक्ट बन चुकी है जनाब, जिसे कहते हैं केसन का शा...

0: जनाब केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन। जनाब ये जब यूज करेंगे हमारा प्रोडक्ट तो आपको समझ आएगी वाकई जनाब ये तो केसन का कोई इनकलाबी प्रोडक्ट है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: जनाब हमारे साथ जो है हमजा खेमटा आ चुके हैं पहाड़पुर एफएम से।
1: जी सर एफएम से सारी थारी आवाज सारे को पहुंचेगी 91.3 88.4 से।
0: क्या बात है, ये तुम्हारे घर ही तरह दे तरह स्टेशन आने हैं जी। पहाड़पुर का ड्यूटी ऑफिसर मुझे बताए की सबसे पहले हमारा प्रोग्राम कौन सा चैनल नशर करता है। एक मिनट का फर्क होता है, डेढ़ मिनट का।
1: प्रोग्राम
0: आपको बताने वाला हूँ, सबसे लेट हमारा एफएम स्टार्ट होता है 88.4 एक डेढ़ मिनट के फर्क से। सबसे पहले जो हमें ट्यून करते हैं वो रेडियो पैगाम वाले। सो राना एजाज आपका बेहद शुक्रिया, या जो भी ड्यूटी ऑफिसर है मेरी तरफ से आप लोगों को एक गिफ्ट है। जो भी ड्यूटी ऑफिसर बैठा होता है ना जनाब, मेरी तरफ से इन तीनों स्टेशन में से इसके लिए गिफ्ट है। जो हमारा प्रोग्राम एग्जैक्ट 4 बजे नशर कर देते हैं, एग्जैक्ट 4 बजे
1: 97.4
0: से 88.4 से मोहन साहब चल रहे हैं। टाइम तो फिक्स कौन ऑन एयर करें तो वो पहाड़पुर एफएम में सही। 'माँ' का क्या कोई दिन मुख्तस होता है ऐसी प्यारी हस्ती कि जिसकी मोहब्बत से मुशाबियत आपका रब खुद दे रहा है कि भी मैं यानी कि अल्लाह ताला को अपनी मोहब्बत बताने के लिए अपनी मोहब्बत का पैमाना बताने के लिए आपका रब किसको चुन रहा है माँ को चुन रहा है। ठीक है जनाब, नहीं किसी और की मिसाल दे। दुनिया में जितनी भी मोहब्बतें हैं वो इस लेवल की नहीं है जो आपकी माँ करती है, और अल्लाह ताला अपनी मुशाबियत बताते हैं कि आपका रब आपकी 70 माओं जैसा प्यार करता है या उससे भी ज्यादा प्यार करता है। तो भाई ये अंग्रेजों के बनाए हुए दिन है मदर्स डे, माँ हर दिन माँ का दिन है। और हमारा दिन तो कहता है कि भाई अपने दिन का आगाज, अपनी सुबह का आगाज जो है अपने वालदैन के दीदार के साथ करो। ठीक है जनाब, कितना प्यारा मजहब हमारा जो कहता है कि भाई सुबह उठकर माँ बाप के पास जाने से क्या सवाब मिलता है, एक हज और उमरे का मिलता है। तो हम क्या एक दिन का इंतजार करें कि मदर डे आएगा तो माँ के पास बैठेंगे? नहीं भाई, हर दिन मदर डे है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जनाब चौधरी साहब पहाड़पुर एफएम से हमारे साथ है, कैसे मोहतरम?
2: जबरदस्त खलील भाई, दुआ करते हैं।
0: अच्छे हैं, मजे में हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी जात का, बहुत बहुत शुक्र है, बहुत रब का एहसान।
0: चलो जी, देखे ना, शुक्र करने वाला बंदा तो उसके तो दिमाग के अंदर वो लहरें चल जाती हैं जब शुक्र अदा करते हैं ना। कोई कुदरत का प्रोसेस ही ऐसा है कि शुक्र अदा करने से सुकून ही सुकून होता है।
2: खलील भाई, जब शुक्र अदा ही है तो कर रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा कर सकते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं। नमाज के हम पूरे पाबंद नहीं है, जितने भी हैं 4 अक्सर हैं, 100 बस है ना, 5 बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे। सीधी बात है, शुक्र किस किस की नेमत, अल्लाह पाक की एक एक नेमत कितनी कितनी हमारे नसीब करी हुई, हम किस किस का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम फिर भी यकीन करो, बहुत कुछ नसीब है अल्लाह पाक ने हमें पैदा कर लिया, मुसलमान पहली मुसलमान होने पर
0: भी अल्लाह ताला का शुक्र कि हमें मुसलमान पैदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है।
2: बिल्कुल।
0: साहब, क्या कौन सा काम ऐसा है जो आप मजबूरी में करते हैं और कौन सा काम है जो आप जो है वो खुशी से करते हैं?
2: कौन सा ऐसा काम है जो मजबूरी में करते हैं?
0: करते हैं, मजबूरी है भाई, करना पड़ता है, लेकिन एक काम है जो आप खुशी से भी करते हैं।
2: खलील भाई, एक तो देखो पेट तो मांगता है, वो तो मजदूरी हो गई। दूसरा काम है जो मजबूरी से करना पड़ता है वो तो घर का ही होता है, बस बेगम के डर वाले ही होता है।
0: अच्छा, जो घर के काम होते हैं वो मजबूरी वाले होते हैं?
2: वो तो मजबूरी है ना, बाकी देखो रिस्क के पीछे तो जाना या रोजी कमाना वो तो मजबूरी नहीं है ना, वो तो खुशी है। जो देखो रिस्क कमा के लाएंगे, बच्चों का हलाल रिस्क लाएंगे तो उसमें वो बच्चे भी खाएंगे और हम भी खाएंगे। किसी से मांगने से, हाथ फैलाने से तो अपना रिस्क कमा लो ना, अपनी मेहनत कर ले है ना खलील भाई।
0: हाँ ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई जो रिस्क कमाते हैं तो वो क्या कहते हैं इसको, कि खुशी के साथ, और मजबूरी में अगर बेगम बता दे भाई दही लेके आ जाओ 50 की, है जी?
2: दही दही की तो खैर है, जो वो कहते हैं ना भाई लहसुन लिया और अदरक लिया और फिरानी चीज लिया, वो पहेलियां भुजवाते हैं ना, उसमें से दो चीजें रह जाती हैं, फिर दोबारा एक आटा और देते हैं।
0: दो काम इकट्ठे मिल जाए, कभी घर वाले कहते हैं, बेगम कहते हैं कि भाई वो रोटियां भी लेते आना 8-10 और साथ में दही भी लेते आना, तो आधा घंटा तो निकल जाता है। फिर बंदा कहता है यार काम फंस गया है जी,
2: आधा घंटा निकल जाता है, फिर घर पे आओ ना, फिर बस अभी बस अभी सालन पकड़ा, 10 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद सालन आता
0: है। चलो ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और चौधरी साहब आज हम बात कर रहे हैं, बात सुने का नहीं, रुके
2: वाले को सलाम और आपको भी खलील भाई,
0: रुक जाएं थोड़ा सा, रुक जाएं मेरे पास।
2: जी जी,
0: मैंने क्या, हम कह रहे हैं कि भाई सुबह भी आपने शो में कॉल की थी और आज हम भाई टांग वालों को भी बता रहे हैं भाई शैम्पू अगर लगाना है तो केसन को लगाओ, लेकिन क्यों लगाओ आप ये वजह बता दे, लगाएंगे तो वो केसन का शैम्पू, आप मुझे पता है क्योंकि उनको पता चल गया कि इनकलाबी प्रोडक्ट जो है केसन की वो केसन शैम्पू है, तो क्यों लगाएं भाई, क्या वजह है कि आप कहते हैं कि वो लगाएं शैम्पू?
2: जब वो लगाएंगे तो उनके बालों में इनकलाब आ जाएगा इंशाल्लाह, अगले देखेंगे अपने बालों को भी देखेंगे और खुश्की को भी देखेंगे, पहले कितनी खुश्की थी और बाल पहले कितने हार्ड थे और अब नरम कितने
0: कितने, यानी कि ये इनकलाब आएगा बालों के अंदर
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो वेरी मच। चौधरी साहब हमारे साथ है रेडियो पैगाम 97.4 FM पर सुनने वाले।
3: घना बनाए दे नया गुमान रोक के है।
0: अच्छा जी, आज पहाड़पुर FM से ना हमारे साथ एक बहन आई हुई थी और जो है वो डिसेबल थी, ठीक है जनाब, डिसेबल थी एक लात से, और वो हमारी शॉप पर आई है, आई थिंक उनके साथ उनके भाई थे या घर वाले थे जो भी थे, एनी हाउ नाम भी मैं याद नहीं रहा क्या नाम था, और वो जहरा परफ्यूम लेने के लिए आई हुई थी पहाड़पुर से, जहरा परफ्यूम लेने के लिए। तो छोटा सा गिफ्ट भी मैंने उनको अपनी तरफ से दिया, तो वो कह रही थी कि भाई मैंने जो है ना आपका शैम्पू, मैंने कहा आप शो प्रोग्राम हमारे दोनों सुन रहे हैं, कहते हैं दोनों मॉर्निंग का भी और इवनिंग का दोनों सुनते हैं, तो मैंने कहा वाकई इनकलाबी प्रोडक्ट है केसन का शैम्पू? तो वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे बाल इतने घने इतने प्यारे कर दिए इस शैम्पू ने। अच्छा जी, ये कल एक भाई कह रहे थे कि भाई आप तो इतना लंबा लेक्चर देते हैं ना, तो लेक्चर भाई वही बंदा दे सकता है जिसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता हो और उसमें बताने के लिए कुछ हो, ठीक है जनाब। जब प्रोडक्ट में बताने के लिए बहुत कुछ होता है ना, फिर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। अभी मैंने आज 2% या 1% भी अभी शैम्पू के ऊपर नहीं बोला, ये आप लोगों की बातें शुरू हो गई। जो इसके इस शैम्पू की जो कहानी है ना, अगर आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दे देंगे ना, सिर्फ 10 मिनट, अभी देखिए मैंने आप लोगों की कॉल्स भी ले ली है, तो मैं आपको अगर 10 मिनट में इसको कहानी बताऊं कि भाई ये क्यों इनकलाबी है, सिर्फ कहने से इनकलाबी शैम्पू नहीं बनता होता। अब खुदा का नाम लो ये मत कह देना बाजार जाके केसन वाला इनकलाबी शैम्पू, इसका नाम केसन शैम्पू है।
3: घना बना
0: जनाब, ये इनकलाबी शैम्पू बन गया है रेवोल्यूशनरी, क्योंकि जनाब जो शैम्पू होता है ना, बहनों और भाइयों आप सबसे मुखातिब हूं मैं, और से 2-5 मिनट मुझे देंगे सिर्फ, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि जो शैम्पू होता है ना वो जनाब 3 चीजों से भी बन सकता है, ठीक है जनाब, 3 चीजों से। SLS ऐड कर दे, कोको बिटेन उसके अंदर ऐड कर दे, खुशबू ऐड कर दे, शैम्पू है, ठीक है जनाब, आपके बाल धोएगा अच्छे तरीके से, साफ भी करेगा। लेकिन शैम्पू का काम सिर्फ बाल धोने तक नहीं होता, ठीक है जनाब, सिर्फ बाल धोने तक जो शैम्पू होता है ना वो आपको 400 रुपए का किलो भी मिल जाएगा, ठीक है जनाब। असल चीज होती है, ये बेस है, 3 चीजें जो आपको मैंने बोली है ना, इससे शैम्पू बन जाता है, लोग खुशबू डाल करके इसको बेच देते हैं, आप लोग खरीदते भी हैं, ठीक है जनाब। अब एक नरिशिंग शैम्पू कौन सा होगा जिसके अंदर कंडीशनर शामिल होगा, जिसके अंदर विटामिन शामिल होंगे? अब केसन का जो शैम्पू है जनाब, इसके अंदर विटामिन B3, विटामिन B5, B5 एक ऐसी चीज है, विटामिन B5 जो है जनाब, ठीक है जनाब, पैंथेनॉल जिसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल शहद की तरह गाढ़ा होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है और शहद से भी ज्यादा गाढ़ा होता है। ये बहुत कीमती विटामिन है, विटामिन B5। ठीक है जनाब, बहुत कम कंपनियां इसको शैम्पू के अंदर ऐड करती हैं, क्रीम के अंदर ऐड करती हैं, क्योंकि उसमें कम डलता है, लेकिन शैम्पू के अंदर इसको ज्यादा डालना पड़ता है और ये महंगी चीज है, तो लोग कंपनियां इसको नहीं डालती हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह विटामिन B5 का ये फार्मूला बनाया हुआ है, प्लस विटामिन B3, यानी कि दो विटामिन जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एक B3 और एक B5। जो B3 होता है, विटामिन B3 जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली आपके बालों को लंबा करने के लिए होता है। ठीक है जनाब, अब आप ये सोचेंगे कि यार ये B3 तो फेयर एंड लवली टाइप क्रीमों के अंदर भी होता है, तो ये इधर क्या काम करेगा? तो भाई इसका बालों के अंदर अपना रोल है। ठीक है जनाब, अपना रोल ये है कि जब आप विटामिन B3 से बना हुआ शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करता है कि जनाब आपके सर के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करते हुए क्या करेगा कि जनाब जब आपके सर के अंदर खून की रवानी बहुत बेस्ट होती है, तो आपके बाल बहुत जल्दी के साथ निकलना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है जनाब, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बालों की बालियां, ठीक है जनाब, जहां से बाल आपके सर में से निकल रहे होते हैं ना, ये उन पोर्स को साफ करता है। ठीक है जनाब, जिसकी वजह से आपके बाल जल्दी के साथ, आप में एक छोटी सी एग्जाम्पल है, एक जनाब एक पौधा है जो जमीन से निकल रहा है, अगर ऊपर जमीन सख्त है तो उस बेचारे पौधे को बहुत टाइम निकलेगा मट्टी में से निकलने के लिए, लेकिन अगर ऊपर जो मट्टी है वो हमवार है, नरम है, तो वो पौधा बहुत जल्दी निकल के जमीन से ऊपर आ जाएगा। यही मिसाल आपके बालों की होती है। ठीक है जनाब, बहुत सारे शैम्पू आपके रूट लेवल के ऊपर काम नहीं करते, वो सिर्फ आपके बालों को साफ कर रहे होते हैं, यही वजह है कि आपके बाल लंबे नहीं होते। अच्छा, ये B5 और B3 फॉर्मूला है, केसन का जो शैम्पू है, विटामिन B5 और विटामिन B3 फॉर्मूला। अभी आप यही लिखेंगे ना सब चैट GPT के ऊपर के भाई खलील भाई कह रहे हैं इनका शैम्पू B3 और B5 है, तो क्या फायदा होगा? वो बोलेगा भाई कमाल की प्रोडक्ट है, इनकलाबी होगा, खरीद लो इससे पहले कि शार्ट हो जाए। ठीक है जनाब, अगर वाकई इनका B5 और B3 फॉर्मूला, तो हमारा जो शैम्पू है वो विटामिन से भरपूर, एक तो ये कहानी इसके विटामिन की है। ठीक है जनाब, दूसरा, शैम्पू वो काम का होता है जो कंडीशनर की खसूसियात आपको दो। कंडीशनर का क्या काम होता है? कंडीशनर, अगर जब आप हेयर केयर मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं ना, तो आप अगर किसी एक्सपर्ट से बात करें कि मैं बालों को मैंने अच्छा करना है तो क्या स्टेप है, तो वो बोलेगा भाई आपने सबसे अच्छे ऑयल से ऑयलिंग करनी है। ठीक है जनाब, ऑयल करने के बाद आपने जो है अच्छे से शैम्पू के साथ शैम्पू करना है, और उसके बाद आपने कंडीशनर अप्लाई करना है। ये 3 स्टेप होते हैं हेयर केयर के। ठीक है जनाब, अब बहुत सारे कंपनियों ने अलहदा से कंडीशनर बनाए हुए हैं कि जब आप शैम्पू कर लेते हैं तो उसके बाद कंडीशनर को भी लगाते हैं। ठीक है जनाब, लेकिन हमने ये फॉर्मूला जो है, ये क्यों इतना बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया है? केसन शैम्पू क्यों सारे प्रोडक्ट्स से ऊपर चला गया है? मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारी ये बन गई है, हर हफ्ते को इसका बैच आता है, हर हफ्ते को इसका बैच आता है, हम पूरा नहीं कर पाते, और कोई भी अब दर्जन का नहीं कहता। मैं आपको टांक वालों से बोल रहा हूँ कि भाई आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने जब हमारा शैम्पू देखा था ना, तो बोला था कि यार 2 कार्टन भिजवा दो, सिर्फ खुशबू देखी और इसकी थिकनेस देखी। अच्छा जी, इसको हमने काफी इम्प्रूव किया है, ये पहले से ज्यादा अब गाढ़ा है, पहले से ज्यादा ये गाढ़ा आपको मिलेगा। ठीक है जनाब, पहले से ज्यादा इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी, और पहले से ज्यादा, पहले इसके अंदर B5 नहीं था, अब पिछले कुछ 6-7 माह से इसके अंदर विटामिन B5 को हमने ऐड किया। अच्छा जी, B3 का क्या फायदा है? B3 का ये फायदा होता है सामिनी ग्राम कि आपके बाल ये जल्दी से लंबे करेगा, यानी कि हेयर फॉलिकल्स को ओपन करेगा। B3 क्यों डाला इसके अंदर? B3 जो होता है वो नमी पैदा करता है आपके बालों के अंदर, और आपके बाल धोने के बाद खुश्क नहीं होंगे। जी बिल्कुल जी, सही कह रहा हूँ कि खुश आपके बाल नहीं होंगे, आपको बिल्कुल जी बेजान बाल नहीं लगेंगे। B3 B5 ये फार्मूला है, और साथ में इसके अंदर जो है 3 तरह के कंडीशनर्स को ऐड किया हमने। तो जनाब B3 जो है, केसन का जो फार्मूला है, केसन शैम्पू के नाम से, ना सिर्फ विटामिन से भरपूर है, बल्कि इसके अंदर कंडीशनर भी मौजूद है। आप इसको कैसे, मास्टर साहब सुन रहे हैं, मास्टर रफीउल्लाह साहब जी, इसको कैसे चेक करना है आपने, क्या वाकई इसके अंदर कंडीशनर है? आप एक दिन अपने बाल धोएं एक आम शैम्पू के साथ। ठीक है जनाब, एक आम शैम्पू से बाल धोएं जो बाजार में आप घर में जो यूज करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना है भाई, आप लोगों ने बता रहा हूँ आपको, दूध का दूध और पानी का पानी। हमारी बातों को क्रॉस चेक किया करें आप, जो भी बोलते हैं ना कभी गलत हो तो दूसरे दिन आके बताया करें भाई झूठ का हम बोला कह रहे हैं जनाब, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, हम आपको खुद तरीके बताते हैं भाई दूध का दूध और पानी का पानी करने का, किसी और से क्या पूछेंगे। एक आम शैम्पू से आप बाल धोएं। ठीक है जनाब, और उसके बाद देखें, दो दिन देखें कि आपके बाल कितने जल्दी मैले होते हैं। जो विदाउट कंडीशनर के शैम्पू होता है ना, जिसके अंदर कंडीशनर शामिल नहीं होता, वो आपके बालों को बहुत जल्द मैला कर देता है, क्योंकि वो चमक की एक कंडीशनर की लेयर आपके बालों के ऊपर नहीं लाता। केसन का जो शैम्पू है ये विद कंडीशनर है, ठीक है जनाब, कंडीशनर फार्मूला है, विटामिन B3 B5 प्लस कंडीशनर फार्मूला है। जब आप इसे बाल धोएंगे तो अगले 3 दिन तक आप अपने बालों में उंगलियां फेरते रहना, आसानी से चलती रहेंगी, क्योंकि कंडीशनर जो होता है ना, जिस शैम्पू के अंदर कंडीशनर होगा, वो इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों के ऊपर मट्टी ठहरती नहीं है, मट्टी जो है वो स्लिप हो जाती है आपके बालों से। तो ये इसका बेनिफिट है, केसन शैम्पू को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत जल्दी मैले नहीं होंगे। यानी कि अगर एक दिन आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अगर 3 दिन आप बाल ना धोएं, आपके बाल वैसे ही सिल्की रहेंगे।

0: के अलावा आप लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या दे?
0: ओहो चाचा न्यू खान, अलहमदुल्ला ठीक ठाक। चाचा कितना गैप थी मैंने तो सब पहले मैं कोई दसो
1: अब क्या थी यार, बात गड्डी नहीं हुई यार, गायब हो चुके मैं।
0: किधर गायब हो जाते हो यार इधर आप? आज आजकल यार आज आजकल तो हमने आपके आपकी जुबान का इलाका टांक में हमने एफएम शुरू कर दिया है चाचा न्यू खान, और हमें पश्तो सिखाने वाला कोई नहीं है। दो चार लफ्ज आप बोलकर इनको बता दो कि केसन किस तरह का कंपनी है
1: यार। हमने तो पता नहीं क्या, हमने तो बहुत जबरदस्त इसकी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया यार।
0: अच्छा
1: इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है वो, जो वो पेट को कम नहीं करती, पेट को
0: हाँ वेट कम, पेट कम,
1: पतला
0: पतला। अच्छा वो फक्की की बात कर रहे हो चाचा?
1: हाँ फक्की तो बहुत जबरदस्त है यार।
0: कैसे?
1: हजमा भी करती है, पतला भी करती है, प्यारा भी बनाती है।
0: अच्छा जी, यानी कि
1: वजन भी कम करती है,
0: वजन भी कम करती है। तो चाची को आपने दी थी या अपना पेट कम किया आपने?
1: हमने तो अपना पेट कम किया, चाची को नहीं खिलाई यार।
0: चाची को क्यों नहीं खिलाई?
1: चाची के अपने जो है ना वो मसले मसाइल होते हैं यार।
0: यार वो आपकी बीवी नहीं,
1: जिम्मेदार नहीं, हम अपने जिम्मेदार है।
0: नहीं कैसे जिम्मेदारी है यार, आपकी अपनी बीवी जो है हमारी चाची, तो फिर उसको आप अपना नहीं समझते हो? ये गुलखान किसका बेटा है? ये गुलखान किसका बेटा है? आपका बेटा नहीं है गुलखान, शरबत खान?
1: इतना बच्चों को यार तुम क्या करते हो यार, इतना बच्चों क्या? को हम क्या करेगा यार?
0: बच्चों का शरबत खान आपका बेटा नहीं है? गुलखान आपका बेटा नहीं है?
1: नहीं यार तुम पता नहीं कौन सा हमें समझ रहे यार, नाम भी तुमने गलत लिया है।
0: अच्छा मुझे ये बताओ
1: आजकल तुम्हारा क्या आया हुआ है? तुम कोई नया बता रहे थे यार, वो कोई दर्द मर्द का तेल खेल का बता रहे थे यार, वो तो बताओ।
0: वो शिफाए दर्द शुतर मुर्ग वाला तेल बनाया केसन कंपनी ने, शुतर मुर्ग के, शुतर मुर्ग की चर्बी
1: वाला, कौन सा मुर्ग वाला?
0: मुर्ग नहीं है, शुतर मुर्ग की चर्बी
1: यार। ये तो ये दाल मुर्ग और ये जो होटलों पर वो जो मुर्ग हुआ मिलता है वही वाला?
0: नहीं नहीं नहीं वो वाला नहीं होता। ये कभी इधर गया वो डेरा में चिड़िया घर के अंदर पाया जाता है शुतर मुर्ग?
1: उसका कैसे शक्ल होता है?
0: उसका शक्ल ऐसे होता है, इतना बड़ा सा ऊपर से होता है, नीचे से पतला से टांगे होती है उसकी, ऊपर फैला हुआ होता है ऐसे, नीचे आप बैठोगे तो छांव होती है, अगर कहीं पर ठहरा हुआ तो नीचे आप उसके साय में बैठ
1: सकते। वो तो जराफा भी होता है, ऊपर से बड़ा होता है नीचे से पतला टांगे होती है वही वाला?
0: नहीं वो जराफा है भाई, एक और शुतर मुर्ग। चाचा आपने अभी शुतर मुर्ग ही नहीं देखा जिंदगी में?
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, जो बड़े बड़े पैर होते हैं उसके,
0: बड़े बड़े पैर होते हैं,
1: गर्दन होती है।
0: हाँ वही तो होता है, मैं वही मैं कह रहा हूँ, चाचा ने कैसे नहीं देखा हुआ?
1: हाँ,
0: उसको जबा करते है ना आप, जैसे गाय को जबा करते हो, बकरी को जबा करते हो, तो उसमें से चर्बी निकलता है?
1: निकलता है,
0: तो फिर चर्बी को जब गर्म करते हैं तो उसमें से तेल निकलता है?
1: निकलता है, निकलता
0: हाँ, निकलता है, निकलता है। तो फिर इसी तरीके से शुतुरमुर्ग को जब जिबा करता है तो उसमें चर्बी निकलता है, और चर्बी को जब पिघलाता है तो उसमें तेल निकलता है।
1: वाह जी वाह, क्या बात है, इसने तो बड़ा तरक्की कर लिया है। ये तेल क्या फायदा है यार?
0: इसका फायदा ये होता है कि जब आप इसको जिस्म के ऊपर लगाओगे ना, आपको गोड़ों का दर्द हो रहा है, घुटनों का दर्द हो रहा है, आपको कमर का दर्द हो रहा है, आपके गर्दन में दर्द है, आपके बाजू, कहीं पर भी आपका मसल जो है ना, गोश जो होता है ये पिच जाए, इसके ऊपर जोर आ जाए, कोई आपको जोर लड़ाई हो जाए आपकी, कोई आपको लगा दे जोर से, कोई लाठी लगा दे आपको, या इस तरह का कोई चीज आपको मार दे, तो इसको फौरन लगाओगे तो ठीक हो गया, लड़ाई का जो है ना टेंशन लेने का।
1: एक हफ्ते से मेरे गर्दन में बहुत दर्द है यार, वो तकिया का ऊपर नीचे हुआ है कुछ,
0: बस ये तो
1: हुआ है, तो ये तेल लगाऊं मैं?
0: वो ये मैं आपको 5 मिनट के अंदर ये आराम होगा। गर्दन का तेल तो कोई चीज भी नहीं है हमारे आयल के सामने, हम तो बड़े बड़े जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द उनकी बात करते हैं, ये तो कमर का दर्द, तो इसको मछे बोलता है हमारी जुबान में,
1: मछे। चलो चलो मछे, हम दूर करने आएगा 2-3 दिन तक, हमारी जगह पे चक्कर लगाएगा।
0: बस ठीक है, जरूर आओ चाचा, और आपको हम देगा इंशाल्लाह ये केसन का शुतुरमुर्ग वाला तेल, और आपका मचे खत्म बिल्कुल।
1: बहुत शुक्रिया, डेरा मनाना टाक पर गुका करो डेरा मनाना।
0: ठीक है, ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। और जी जनाब जरूर चक्कर लगाइएगा फिर। ठीक है जनाब, और जी हमारे साथ जो है मौजूद थे, कौन मौजूद थे जी जनाब, कौन कौन जानता है इनको, चाचा न्यू खाना।
2: अब

जी जनाब, बात हम जो है आज शैम्पू की कर रहे थे, लेकिन चाचा न्यू खान आ गया जनाब और वो पड़ गए हमारे तेल के पीछे कि भी कौन सा तेल है। तो जनाब शुतुरमुर्ग का तेल है, वह जरूर खरीदिएगा और आपके लाखों रुपए हम बचा सकते हैं। शोएब भाई टांग से हमें सुन रहे हैं जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और अस्सलाम वालेकुम केटीए, कैसे हो? उर्दू वाली महानूर हूँ। और प्लीज थोड़ा आराम आराम से मैसेज पढ़ा करो, अब तो इतनी तेजी से पढ़ते हो ऐसा लगता है जैसे आपके पीछे जो है मान ही आ रहा है। कल तो आपने मेरे शेर के हाथ पैर तोड़ के रख दिए, मैंने कितने प्यार से इसके हाथ पैर जोड़े थे, मगर आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इसे तोड़ने में। प्लीज आराम से पढ़ा करो मैसेज। और कहते हैं कि अनीसा को सबको मेरा सलाम हो गया। चलो जी, अगली दफा जब आप मैसेज पढ़ेंगी तो उसके हाथ पांव बांध के हमें भेजिए। अच्छा महानूर बहुत ज्यादा शैम्पू लेके जाती है हमसे, तो महानूर वाई क्यों नहीं बात कर रही आप केसन के प्रोडक्ट के ऊपर? और महानूर तो बहुत ज्यादा हमसे केसन का ये शैम्पू लेके जाती है। अस्सलाम वालेकुम केटीए, क्या हाल है? मैं अनीसा हूँ, अनसा नहीं हूँ, और मेरी आवाज आपकी आवाज से ज्यादा प्यारी है, मगर मैं अपनी आवाज नहीं सुना सकती। अगर मैंने आवाज सुनाई आपको तो शो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सब कहेंगे केटीए की जगह अनीसा शो करे, इसलिए मैं आवाज नहीं सुना सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका शो बंद हो। मानूर शेर तो अच्छा लगा, मगर केटीए ने जो इसका शेर का बेड़ा गर्क कर दिया था, कुछ समझ नहीं आई में मानूर को और सबको मेरा सलाम। अच्छा जी, यानी कि लड़की अब तुम्हारा दावा है कि तुम्हारी आवाज मुझसे ज्यादा प्यारी है। एनी हाउ, चलो देखते हैं, कभी तो आप हमें कॉल करेंगी। इनोसेंट दुर्यादन, द यूजर ऑफ ओनली केसन प्रोडक्ट, अस्सलाम वालेकुम। शेरिंग गुफ्तार, मीठी आवाज, पुर असर अल्फाज के मालिक, मेरे अजीज भाईजान एंड मोहतरम उस्ताद जी, कैसे हैं आप एंड आपके फैमिली मेंबर्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, शो आपकी तरह अच्छा है, हम लिसनर्स के साथ रौनक बढ़ी है। सोनिया आपी, आप कैसी हैं? अच्छा जी, आज सोनिया आप ही केसन शॉप पर आई हुई थी शिफा दर्द लेने के लिए। एंड मानूर सिस्टर आप कैसी हैं? लाइव कैसी जा रही है आपकी? और उम्मे हरम और केजो हिना का कुछ अता पता है? और हाँ भाई, इरम शहजादी मैंने ने मुझे सलाम दिया और और आपने मुझे तक पहुंचाया तो नहीं, उसके लिए वालेकुम सलाम। और आप पर और पर सलाम दियो, हमेशा खुश रहें, आप सलामत रहें, केसर नेचुरल पाकिस्तान के लिए दुआ आगे हुआ है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी अताउल्ला शाह बुखारी जनाब, अताउल्ला हमारे साथ मौजूद है फेसबुक लाइव के ऊपर। हसीब जनरल स्टोर वाले नौमी मजबूर भी मौजूद हैं, वाह जी वाह कह रहे हैं जनाब, थैंक यू सो वेरी मच। और मोहम्मद हमजा केमटा सलाम कह रहे हैं, माँ के आलमी दिन के ऊपर उनसे हमने कुछ सुना भी था, बहुत शुक्रिया आपका। और एम साकिब हमारे साथ चश्मा बेराज से मौजूद हैं, कहते हैं प्रोग्राम आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हादी भाई, स्टडी माशा, मैं बिल्कुल जी ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल एवं जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनिया अवान, मैं सारे काम काज कर करके थक चुकी हूँ, कोई काम खुशी से नहीं करती, अब सिर्फ आपका प्रोग्राम खुशी से सुनती हूँ। सब सुनने वालों को सलाम जी जनाब, केसन केसन शैम्पू द रेवोल्यूशन।

0: अब सोनिया वान कहती है भाई कोई काम भाई थक गए हैं काम काज कर करके, काम भी की खुशी से करने वाला होता है। ठीक है जनाब, कहते हैं कि मजबूरी में करते हैं सारे के सारे काम और सिर्फ एफएम का प्रोग्राम जो है केसन शो जो है वो खुशी से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। और कहते हैं जी जियो मैं नहीं मिलता, मेरा स्किन ऑयली है तो मैं क्या इस्तेमाल करूँ। तो जो है जिसकी भी स्किन ऑयली है केसन में गो पिम्पल को पकड़ो, गो पिम्पल को पकड़ो, गो पिंपल को पकड़ो। और मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, केसन का गो पिंपल जो फेस वॉश है वो इतना अमेजिंग है कि आपकी समर की सारी समस्याएं जो हैं, सारी मुसीबतें जो हैं, सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जनाब समर के अंदर यानी कि गर्मी के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल का आ जाना, और पसीना और ऑयल जब एक साथ आपके पोर्स से निकलते हैं तो जनाब वहां पर फंगस पैदा होता है। अगर आप इन दिनों के अंदर केसन का गो पिंपल यूज करेंगे, गो पिंपल फेस वॉश जो आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, और जब ऑयल कंट्रोल होगा तो फंगस नहीं बन पाएगा, आपके ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा जरजीमों का, और आपकी स्किन बिल्कुल जनाब एक्नी फ्री रहेगी, ऑयल फ्री रहेगी। तो भाई ये कहते हैं कि भाई मैं क्या इस्तेमाल करूं, तो भाई आप केसन का गो गो गो गो पिंपल को इस्तेमाल करो।
1: चमक सिल्की टेक्सचर से महके हर तरफ।
0: जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, आई एम शादाब फ्रॉम आजाद कश्मीर, मैं आपका प्रोग्राम डेली सुनता हूँ, इट्स वेरी नाइस एंड हेल्पफुल फॉर पीपल। ठीक है जनाब, कहते हैं कि लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद प्रोग्राम है जो आप पेश कर रहे हैं, और कहते हैं कि सुबह के वक्त उठना, लोग खुशी से भी उठते हैं नमाज पढ़ने के लिए और मजबूरी में भी उठते हैं काम काज के लिए। तो ये कहते हैं कि खुशी से जो है लोग उठते हैं और साथ में क्या करते हैं जनाब, जी जनाब जो मजबूरी में मजबूरी से भी उठते हैं और खुशी में भी उठते हैं। तो जनाब कहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा कामयाब हो सकती है। ठीक है जनाब, जिस दिन वो काम जो आप मजबूरी में करते हैं ना, जिस दिन, ठीक है जनाब, कहते हैं कि जिस दिन आपने अपनी रूटीन बदल दी और वो काम जो आप समझते हैं कि ये मेरी मजबूरी है, अगर आपने उन कामों को खुशी से करना शुरू कर दिया तो आपकी आधी जिंदगी जो है सहल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो आज के टॉपिक थोड़ा सा फनी भी था, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज है कि आपने आज सोच लिया होगा, बहुत सारे लोग सिर्फ प्रोग्राम सुन रहे थे, वो हमें फीडबैक नहीं दे पाए हैं, तो जो जो जिन जिन लोगों ने सोच लिया कि भाई कौन सा काम मेरा मजबूरी का है और कौन सा खुशी का है, तो जनाब उन दोनों कामों को नोट कीजिएगा, और जो काम आपको लग रहा है ना कि आप ये मजबूरी में करते हैं उसी काम को खुशी से करना शुरू कर दीजिए। जो काम आपको मजबूरी लग रही है ना कि ये काम मेरी मजबूरी है, उसी काम को उलट कर दीजिए और उसी काम को कल से खुशी से कर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है जनाब, उसी काम को जैसे आप खुशी से करेंगे तो आपको एक तो टेंशन फ्री हो जाएंगे कि जनाब अब कोई काम ऐसा नहीं रहा है जो आप जो है मजबूरी में कर रहे हैं, बल्कि सारे के सारे काम जो है वो आप खुशी से कर रहे हैं। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी इन तीनों स्टेशन के ऊपर, और तीनों स्टेशन ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान, रेडियो पैगाम 97.4 पहाड़पुर और रेडियो अमर 88.4 पहाड़पुर से, सॉरी टांग से, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बान।

आज जो हमारे पास उनवान है, एक खूबसूरत सा, प्यारा सा, छोटा सा, लेकिन उसमें मैसेज बहुत बड़ा होगा, उसमें पैगाम बहुत बड़ा होगा, उसमें सीखने के लिए बहुत सारी बातें हमें मिलेंगी, आपके साथ हम रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज भी हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं और आपकी दुआओं से और अपनी कोशिश से इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को, इस टॉपिक को आपके सामने बेहतरीन तरीके से पेश करेंगे और अब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।

डियर सामीन और डियर नाजरीन, आप सुन रहे हैं रेडियो अमन FM 88.4 टांको। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट महर। डियर, जैसे कि पता है कि इतवार के दिन हम 5 से 6 बजे प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम में आपके साथ हम एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी कहानी होती है और पैगाम बहुत बड़ा होता है। तो आज नकली और असली हीरों की पहचान, नकली और असली हीरों की पहचान, ये आज उनवान है। नकली और असली हीरों की पहचान, मतलब असली मर्द और नकली मर्द, इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे। आप हमारे साथ रहिए। नकली और असली हीरों की पहचान कैसे करेंगे, कैसे और असली और नकली इंसान और मर्द की पहचान कैसे करेंगे, इसको हम फिर कहानी के एंड में बताएंगे आपको। एक बादशाह ने अपनी रियाया की इल्मी काबिलियत जांचने के लिए कि मेरी जो रियाया है वो कितनी ज़हीन है, फतीन है, और मेरे इलाके में, मेरी रियाए में कितने लोग साहिब इलम हैं, दानिश्वर हैं और साहिब फरासत हैं, साहिब बसीरत हैं, दाना हैं। तो इसको जांचने के लिए उसने एक अजीब व गरीब तरीका अपनाया और इस अजीब व गरीब तरीके में उसने इनाम भी रखा, तहाइफ भी रखे और कीमती घर भी रखा बना हुआ। तो उसने ऐलान ऐसे करवाया अपनी रियाया के दरमियान, अपने मुल्क के और अपनी आवाम के दरमियान, कि जिसने भी, मेरे पास कुछ नकली हीरे हैं और कुछ असली हैं, क्योंकि उसने नकली हीरे ऐसे तराशवाए थे, ऐसे बनवाए थे एक जोहरी से कि कोई भी फ़र्क नहीं कर सकता था कि इसमें नकली कौन से हैं और इसमें असली जो वो कौन से हैं। तो आपको पता है कि आजकल जो जेवरात है ना, जेवरात ऐसे जेवरात भी हैं जिसके ज़रिए आप नकली और असली का फ़र्क नहीं कर सकेंगे। ऐसे जेवरात हैं जिसमें आप नकली और असली का फ़र्क नहीं कर सकेंगे इस हवाले से। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। तो लोग आते गए और जो लोग नाकाम हुए, मतलब असली और नकली हीरों में अलहदा करने में नाकाम हुए या उनको अलहदा नहीं कर सके या उनकी शिनाख्त नहीं कर सके, जैसे इनाम है ना, 3 इनामात दिए जा रहे हैं या 4, तो इस किस्म की एक सज़ा भी उसके लिए तजवीज़ की, सज़ा भी देंगे। तो लोगों ने कहा चलो, सज़ा तो एक किस्म की है और इनामात बहुत सारे ढेरों हैं, तो जो सारी ज़िंदगी की कमाई करें तो फिर भी हमें नहीं मिलेंगे मजदूरियां कर करके, तो क्यों ना किस्मत आजमाने में, तो देर इज़ नो हार्म टू ट्राई अवर लक, किस्मत आजमाने में तो कोई हर्ज नहीं है, चलो हम भी खेलते हैं। तो वो आए मैदान में, लोग आते गए, जवान आते गए, दाना लोग आते गए, मरल, लेकिन वो सब बहुत बुरी तरह, दे फेल्ड बैडली, नोबडी कैन सक्सीडेड। तो कोई शख्स कामयाब नहीं हो सका और आगे नहीं बढ़ सका, और ये इनामात जो हैं वो कभी भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका कोई भी शख्स। तो इस हवाले से वो सज़ा भी पाते और चलते बनते। तो बादशाह सलामत बड़ा मायूस हुआ कि इतनी रियाया में ऐसे लोग कोई भी नहीं आए, कुछ डर के और खौफ की वजह से नहीं आए कि कुछ शर के सज़ा मिलेगी, कुछ अपनी हो सकता है। तगड़े लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उस टैलेंट में थोड़ा सा छुपा खौफ होता है, शर्मिंदगी होती है, शर्म हो कि शायद अगर मैं न कर सका तो नो प्रॉब्लम, ज़िंदगी तो पार्ट ऑफ द गेम है कि कभी जीत और कभी हार होगी। तो जिसके अंदर हौसला होगा, जिसके अंदर हिम्मत होगी, तो वो कभी हारता नहीं है, या वो सीखता है या वो जीत जाता है। तो अगर बाहिम्मत लोग, बाहौसला लोग कभी हारते नहीं, या जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। तो बहरहाल सब लोगों ये मतलब एक खामोशी छा गई, डर और खौफ कि कुछ लोगों को सज़ाएं मिले और कुछ डर और खौफ और शर्म की वजह से नहीं जा सके। तो बहरहाल एक दिन नाबीना शख्स आए, ये मतलब इनाम व इकराम का जो ऐलान था ये बरकरार था। तो एक शख्स नाबीना फ़कीर वहाँ गया और नाबीना फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत आपने ऐलान किया है और उस ऐलान के लिए मैं आया हूँ, और मैं अलहदा नकली और असली हीरों की पहचान रखता हूँ, इसको मैं अलहदा करके दूंगा। तो बादशाह ने पहले तो बड़ा अजीब गरीब नज़रों से उसको देखा कि नहीं, जब बिना नहीं कर सके, आँखों वाले नहीं कर सके, जिनके पास बसारत थी वो नहीं कर सके, आप तो ना बिना है, लाठी के सहारे एक आदमी पकड़ के आप बुलाए, तो आप कैसा जुदा इसको अलहदा कर सके। कहा फिर आप ये वजूद, ये जिस्म, ये बर्दाश्त कर सकेगा सज़ा जो मैंने तजवीज़ की है, ऐसा ना होना कि मैं जो सज़ा बर्दाश्त ना कर सकूँ और इनाम के लिए आ गए हो। उसने कहा मुझे आपकी हर सज़ा कबूल है, लेकिन आप मुझे मौका तो देना, पहले से तो मुझे न डराएं।
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اب سب لوگ ورت حیرت میں, سب لوگ حیران اور پریشان اور اداس بھی تھے کہ یہ کمزور بوڑھا فقیر یہ کیسے علیحدہ کرے گا. تو اس کو سامنے ہیرے اس کو دے دیے گئے, اور جب اس کو ہیرے دے دی گئے تو اس نے ایک خوبصورت ایک سب سے علیحدہ کام کیا. یہ فرش پہ لے گیا جہاں پہ بہت تیز دھوپ پڑ رہی تھی, وہاں پہ یہ اس نے بکھیر دیے تمام نقلی اور اصلی ہیرے جو مکس تھے نا, اس نے بکھیر دیے. اور جب بکھیر دیے تو یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, تقریباً گھنٹہ ہوا, اور گھنٹے کے بعد پھر اس کی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک ہیرا اٹھاتا, دو دو ہیرے اٹھاتے, ہاتھ میں رکھتا, ہتھیلی میں رکھتا,

कर पाए, ये भी तो होगा, इनामात की जल्दी क्यों है आपको? तो उसने कहा ठीक है। तो जोहरी को जब ये दिखाया गया, जोहरी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये नाबीना फकीर वाकई ही कामयाब हो चुका है और इसने नकली और हीरों असली हीरों को अलहदा अलहदा कर लिया है। दो बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गईं और ऐसा जिस्म पे सख्ता तारी हो गया और ऐसा हैरान हो गया और रंगत उड़ गई कि ये कैसे मुमकिन है कि एक अंधा देख नहीं सकता और इतने लोग देखने वाले हैं, ये कैसे कर गया? तो बादशाह ने बड़ी अजीब नज़रों से, सवालिया नज़रों से पूछा कि ना आप ये बताएं आपने ये कैसे किया? उसने कहा बादशाह सलामत, ये तो बहुत आसान था, मैं इस फर्श पे ले गया जहाँ पे धूप पड़ रही थी, फर्श पे मैंने इसको इनको बखेर दिया और बखेरने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के जब ये सारे गर्म हुए तो उसके बाद मैं बारी बारी जाता, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाता थोड़ी सॉरी मतलब उठाता और उठाने के बाद महसूस करता। बादशाह उसने कहा बताओ तो सही कैसे फ़र्क किया, कैसे अलहदा? कि उसने कहा जो गर्म मैंने मतलब जो गर्मी पड़ रही थी, जो धूप पड़ रही थी और फिर मैं महसूस करता और जो गर्मी और धूप से हीरा गर्म हुआ मैंने उसको अलहदा किया और जो हीरा गर्मी को धूप को हरारत को बर्दाश्त कर गया मैं उसको दूसरी साइड पर करता गया। का फ़र्क कैसे किया? का फ़र्क यह है जो गर्म हुआ जो हरारत नहीं सह सका, जो धूप के पड़ने से गर्म हुआ तो समझो कि ये नकली हीरा है और जो हीरा गर्मी को बर्दाश्त कर गया, हरारत को बर्दाश्त कर गया, धूप को बर्दाश्त कर गया, उस सख्ती को बर्दाश्त कर गया, उस गर्मी को बर्दाश्त कर गया तो वो असली हीरा था। वो ठंडा रहता तो मैं ठंडा एक साइड पे और जो गर्म होता वो दूसरी साइड पे। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और इसकी इस दानिशमंदाना गुफ्तगू और जवाब और जैसे अहले इलम होते हैं उस तरह जवाब देकर बड़ा खुश हुआ और उसे कहा कि वाकई तुमने आज मुझे हैरान कर दिया कि वाकई अगर मैं तलाश करूं तो इससे भी बड़े बड़े हीरे मुझे मिल सकते हैं इंसानों की शक्ल में। तो ढेर सामीन और ढेर नाजरीन, इसको तोहफे भी दिए गए, इनको इनामात भी दिए गए और सबसे बढ़कर दिए गए जो इनाम था, क्योंकि ये अंधा था नाबीना था, और इसको रहने के लिए एक खूबसूरत घर भी मिल गया। ढेर सामीन और ढेर नाजरीन, हमारी मिसाल भी नकली और असली हीरों की है। एक असली इंसान होता है, एक नकली इंसान होता है, एक असल मर्द होता है, एक नकली मर्द होता है, ठीक है डियर? जिस तरह इंसान जिस तरह गर्मी को हीरा बर्दाश्त कर गया, सह गया, बर्दाश्त कर गया, गर्म नहीं हुआ, आग बगूरा नहीं हुआ, हरारत मतलब उसने अपने अंदर जज्ब कर ली, ठंडा रहा तो असली हीरा था, जो गर्म हुआ नकली हीरा। इस तरह हमारी ज़िंदगी में इस तरह धूप की तरह हालात आते हैं, वाकियात आते हैं। जब मुश्किल आई अगर हम ठंडे रहे, मुश्किलात आए हम साबिर रहे, हादसात आए हम तवक्कुल करते रहे, और अगर मुश्किलात के अंदर अंदर हम मायूसी की तरफ, मायूसी वाले हालात भी हों तो भी हम आगे बढ़ते जाएँ, ठंडे रहें, सह जाएँ, बर्दाश्त कर जाएँ, तवक्कुल कर जाएँ और सब्र कर जाएं, तो हम असली मर्द हैं। जिस तरह हीरा बर्दाश्त कर गया वो असली हीरा कहलाया, और जो इंसान सह जाए और डरे नहीं, सहमे नहीं और बर्दाश्त कर जाए इस गर्मी को, ज़िंदगी की इस गर्मी को, ज़िंदगी के इन हालात को, इन मुश्किलात को, इन हादसात को, इन सानहात को सह जाए और आगे बढ़ता जाए और मायूस न हो और उदास न हो। हालात ज़रूर आएंगे लेकिन इंसान की ज़िंदगी, इंसान को अल्लाह पाक ने बहुत कमाल का बनाया है। 18,000 मखलूक में सबसे कीमती जो मखलूक है अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ सबसे वो इंसान है, और इंसान अगर सहना नहीं सीखता, सब्र नहीं सीखता, तवक्कुल नहीं सीखता, बर्दाश्त इसके अंदर नहीं है तो मेरे ख्याल में ये असल मर्द नहीं है। जिसको जिसकी तारीफ़ हो, जिसको अल्लाह पाक इनाम से नवाजें, जिसको जन्नत के अंदर घर दें और दुनिया के अंदर कामयाबी दें, आखरत में कामयाबी, जिसका किरदार इस दुनिया को खूबसूरत नहीं बना सका तो आखरत में उसका किरदार कैसे उसको जन्नत में ले जाने वाला बनाएगा? तो डियर सामीन और डियर नाज़रीन, इशफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि चाय की अच्छी पत्ती का अंदाज़ा गर्म पानी में मिलने के बाद होता है। तो बिल्कुल इसी तरह अच्छे बहादुर, जुरतमंद, निडर और बाहौसला इंसान का अंदाज़ा मुश्किल हालात में होता है। हमारा सब्र ही हमारा तआरुफ़ है, हमारी गुफ्तगू, किरदार, अखलाक, हाँ जी सब्र,
हमारा तारुफ होता है, किसी के साथ लेन देन और उसके अंदर होने वाली बदमजगी और

गामा पहलवान था, गामा पहलवान डियर सामीन। तो गामा पहलवान ऐसे था, गामा पहलवान जब इसने बहुत लंबी कहानी है और कहाँ से आया, कहाँ से शुरू हुआ, बड़े लंबे और तकरीबन 52 साल तक के 42 साल तक उसे कोई हरा नहीं सका। फिर पाकिस्तान से जाके दूसरे मुल्क में लड़ा, वहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की, तो कई घंटे, पाँच घंटे वो जंग और लड़ाई कुश्ती लड़ता रहा, लेकिन ना अंग्रेज जीत सका न ये गामा पहलवान जीत सका। मेरी बात समझ रहे हैं ना, सुन रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा आया कि अगले दिन का एक दो दिनों के बाद फिर लड़ाई, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का अनबीटन था, उसे अंग्रेज़ नहीं हरा सके, सब अंग्रेज़ों को उसने हराया था और इसने सब मुसलमानों को हराया था जितने भी इसके मुकाबले में पूरे पाक, जब ये इंडिया पाकिस्तान ये बांग्लादेश नहीं बना था, तकरीबन मुतहिद हिंदुस्तान था उस वक्त, मतलब ब्रिटिश की हुकूमत थी ना, या मुग़ल, गालिबन मुग़ल दौर था, इस तरह था। बहरहाल दौर का हमारा इसके साथ, दौर के साथ कोई काम नहीं है, बस बताना ये है कि जब ये वहाँ पे गया, वहाँ पे रुस्तम हिंद, हिंदुस्तान का एक टाइटल लेकर आया, रुस्तम हिंदुस्तान का इतना बड़ा नाम। तो जब ये वहाँ आया तो एक आदमी से इसकी लड़ाई हुई, एक दुकानदार से कुछ चीज़ ख़रीद रहा था और उसने इसको वो पार्ट जो जिसमें वो तोलता है ना वो बर्तन, उसको इसके सर पे दे मारा। जब इसके सर पे दे मारा तो इसके खून, सर से खून का फुहारा छूटा, खून बहने लगा और इसने रुमाल निकाला, सर पे पट्टी बांधी और चल पड़ा। तो उसे शागिर्द ने कहा कि उस्ताद सलामत, ये आपके एक मुक्के से मर जाता, इतने बड़े पहलवान जो पाकिस्तान तो क्या दूसरे मुल्क में लोगों को हरा के आ गए और उस आदमी को हरा के आ गए जिसे पूरे अंग्रेज़ नहीं हरा सके, तो आपने हर, और आप ये कैसे, इसको कुछ नहीं कहा, अगर आप इसको उठाते तो ऐसे गेंद की तरह वहाँ पे फेंक दे, ये हड्डियाँ पसलियाँ इसकी टूट जाती। उसने कहा बेशक ये मेरे एक मुक्के की मार था, क्या एक मुक्के से मैं इसको मार देता और इसको उठाता उधर फेंकता तो ये मर जाता, हड्डियाँ भी इसकी टूट जाती। बात ये नहीं है कि मैं इसको हरा देता, बात ये नहीं है कि मैं इसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, बात यह है कि इतना बड़ा रेसलर और बॉक्सर, सॉरी रेसलर और कबड्डी वाला मैं जब बना हूँ, लोगों को इतना मैंने हराया है और दूसरे मुल्कों में, तो मैंने क्या इंतकाम लेने से मैं इतना बड़ा पहलवान बना हूँ, मैं तो माफ़ करने से बना हूँ, बर्दाश्त करने से बना हूँ, हौसला करके बना हूँ। तो डियर सामीन और डियर नाजरीन, हौसला आप करेंगे और बाहिम्मत लोग ही दुनिया में इनकलाब लाते हैं, बाहिम्मत और हौसला मंद लोग ही, उलुल अज़म लोग ही दुनिया में इनकलाब लाते हैं। तो इस लिहाज से डियर सामीन और डियर नाजरीन के मतलब गम पहलवान ने उस दुकानदार को कुछ नहीं कहा और वापस चल पड़ा और खून भी इतनी तकलीफ़ दी उस दुकानदार ने, लेकिन इसने कहा कि सब्र से और बर्दाश्त से इतना बड़ा मैं इंसान बना हूँ। तो जब आप एक बड़े प्लेयर हैं, एक बड़े कबड्डी वाले हैं, एक बड़े पहलवान हैं, तो एक बड़े इंसान भी होने चाहिए ना। सिर्फ पहलवान होना या क्रिकेटर या फुटबॉलर या एक बड़ा तो आप हैं, लेकिन एक बहुत बड़े अफसर तो हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो फिर आप समझ जाएँ कि आपकी तालीम का आप पर कोई असर नहीं हुआ। अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते, आप लोगों की तरक्की के लिए, उसकी तालीम के लिए, अखलाक के लिए, किरदार के लिए और उसके लिए, उसकी तरक्की के लिए कुछ नहीं करते, तो मेरे ख्याल में जो आपके पास इख्तियार है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो डियर सामीन और डियर नाजरीन, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इसी गामा पहलवान ने ऐसा किया कि सारे लोग जब ये दूसरे मुल्क से उस अंग्रेज़ को हरा कर आ गया ना, तो सारे लोग जमा थे, तो एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा था और सब लोग इसका देखने के लिए आए थे, उसके मतलब अड्डे पे और उसके खेत पे, उसके फार्म हाउस पे, तो सारी दुनिया उसको देखने आई थी। तो एक बूढ़ा आदमी ने कहा कि गामा ये हुक्का जो है मुझे उठा कर दे दो। तो गामा को लोग देखने आए हैं और एक बूढ़े ने कहा कि हुक्का उसको उठा कर दे दिया और उसको तकिया दे दिया। तो उसने कहा ये कौन है? उसने कहा बस छोड़ो कि कौन है। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि जब तू छोटा था तो आप तो कदर करते थे असाज़ा की, क्या बड़े होकर और इतना रुस्तम जमा का टाइटल और नाम और उनवान और इतनी इज्जत और शोहरत पूरी दुनिया में कमाई, क्या आज भी तू बड़ों का एहतराम, असाज़ा का एहतराम, उस्ताद का एहतराम करता है कि नहीं जिसने अखाड़े में तुम्हें कबड्डी सिखाई? उसने कहा मैं आज भी, तो लोग हैरान हो गए कि आज भी अगर इसको कुछ मिला है तो असाज़ा की, बड़ों का एहतराम और जिसने इसके साथ मेहनत कोशिश की है, तो उसी के सिले में आज इसको मकाम मिला है। तो एक बड़ा इंसान, अफसर तो बन जाता है इंसान, बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन जाता है, बहुत बड़ा प्रोफेसर और टीचर, लेकिन अच्छा इंसान बनना नहीं है,
یہ بہت مشکل ہے. اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ 3-4-5 سالوں میں تو بچہ بولنا سیکھ لیتا ہے, کب بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, اور اگلا کون ہے اس کے مزاج کے مطابق, اس کی تعلیم کے تجربے کے مطابق, اور اس کے اخلاق کردار, اس کے عہدے کے لحاظ سے بولنا. تو اس پہ زندگیاں بیت جاتی ہیں. بات ہیرا ہے بات موتی ہے, بات ہیرا ہے بات موتی ہے, بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے, بات ہر بات کو نہیں کہتے, بات مشکل سے بات ہوتی ہے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن FM 88.4 ٹانک, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست, آپ کا قدرت مند مہر.

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
3: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।

0: मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

खजरा दी मैसेज बरीड को 7 अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम माय डियर ब्रो, हाउ आर यू? आई लाइक यूर शो, आई लाइक यूर स्वीट वॉइस क्लियर और एफ एम जलमी रेडियो नौशहर। इट इज मी गुल सुलेमाना नूर, गुल सुलेमानूर, कुबैदा नूर, जुबैदा नूर एंड सुलेमानूर एंड कवल नूर फ्रॉम ब्यूटीफुल नौशहर, लविश्मा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और वॉशिंग पाउडर।

0: जो कतर कतर मोहब्बतों से न हो सकेगा मेरा गुजारा।
1: तेरी इज्जत तेरी गैरत को संभालूंगी जाना।
0: जो कतर कतर मोहब्बत से न हो सकेगा मेरा गुजारा अगर अभी
1: तेरा साथ है जो जाना।
0: अगर अभी दोगे मुझको मेरे किसी का प्यार सारा सारा का सारा तो मैं तुम्हारा। देर यू कतर कतरा मोहब्बतों से न हो सकेगा मेरा गुजारा अगर अभी दुखे मुझको मेरे हिस्से का प्यार सारा का सारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तवीज कर रहे हो, ये किस को पाने हैं वजीफ, ये किस पे तवीज कर रहे हो, ये किस को पाने हैं वजीफ। तमाम छोड़ो तो कर लो एक इश्तेहारा तो मैं तुम्हारा।